0: एलिजाबेथ की पीटीए एलिजाबेथ की ग्लैंड को ओवर
1: गो अहेड ग्लैंड ओवर ओवर
0: एलिजाबेथ की इज नेगेटिव फॉर द लॉस्ट प्रॉपर्टी एट माय एंड आई हैड अ गुड लुक फ्रॉम डोर 1 टू 6 नथिंग फाउंड ओवर
1: Thank you, Glendalough, PTA, Elizabeth Key out.